0: It's a good win in terms of the margin, but your batting order, especially the middle one, would be a concern.
1: Well, I think I'll start with the positives. I think Smithy and Shefali batted really well. I think in the middle over, yes, that's why we wanted to bat, to get used to these conditions. I know even I think today's pitch was better than how it played the previous game. But I think it's all about, you know, spending some time on the pitch and getting used to these conditions, because we are not that much aware of these conditions. But I think still we were able to manage what we wanted as a team, close to 200. And I think later on, bowler did a great job for us.
0: Given the conditions, you went unchanged. So is it safe to say that you've sorted with the 11, or you want to check the bench strength?
1: Well, I think we are pretty much sorted, but still, you know, we have another one more day to think about if we want to, you know, change something, or if we want someone else to come up and take the responsibility. But I think for now, we are pretty much sorted.
0: Well, talking about Smithy Mandhana, the top run scorer, Deepti Sharma, the top wicket taker, how does these things make easier as a captain?
1: Well, I think as a captain, I'm grateful that, you know, these players play for my country, and I think leading them is always a great opportunity, and good to see that, you know, someone like Smithy who's getting the runs and you know, playing that crucial inning for the team, and Deepti is somebody, you know, who is keep doing the hard work whenever team needed, and great to see you know, again she got us those crucial wickets.
0: And lastly, I would like to ask you to say a few words for the Hong Kong China team, because obviously they've played against you and they've shown some potential.
1: Yes, definitely. I think the one thing which I like really about them, the way they celebrate themselves on the field, I think that's a great learning, because when you keep playing hard cricket, one thing you always forget to enjoy yourself on the field. But whenever we see them playing, no matter whatever the result, I think they enjoy each and every single moment on the field. I think that's a great learning for us also. You know, I think when you're playing hard cricket, you have to keep enjoying yourself on the field. So yeah, I think great playing against them.
0: Very well done, and go well for the future games.
1: Thank you so much.
2: तो एक तरफ भारतीय खेमे में जीतने का उत्साह है, तो दूसरी तरफ हांगकांग हारी जरूर है, लेकिन एक बात की संतुष्टि भी है कि वर्ल्ड क्लास भारतीय टीम का उन्होंने सामना किया, और कुछ हद तक ही सही, उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। क्या कहेंगे मनोज, जिस तरीके से हरमन ने कहा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि कुछ की प्लेयर्स का चलना राहत की बात है, क्योंकि भारत पहली टीम है इस विमेंस एशिया कप में जिसने नॉकआउट के लिए क्वालिफाई कर लिया है।
3: जी हाँ, बिल्कुल, और उनका कहना बहुत वाजिब भी है। सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं हम लोग, और फिर भी कई अनुत्तरित सवाल हैं, उनका हल हमें ढूंढना होगा अभी, क्योंकि इस मैच में एक टीम 17वें ओवर तक पहुंच जाती है आपके खिलाफ, एक एसोसिएट टीम, और पिछले मैच में कोलैप्स आपका होता है। इसके अलावा नंबर तीन की पोजीशन, जो हमने पहले भी जिस पर चर्चा की, वो अभी गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। और ठीक है, जेमिमा आएंगी या जस्सिका आएंगी तो शायद हम इस उम्मीद में कि समस्या का हल हो जाएगा। फिनिशर कौन होगा हमारा, उसका भी अभी तक हमें जवाब नहीं मिला है, क्योंकि रिचा भी उस पर बहुत ज़्यादा निर्भरता, वो भी बहुत आत्मघाती साबित हो सकती है। तो कुछ एक सवाल हैं, और भारती और प्रतिका जिस पर हम अक्सर चर्चा कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी लेवल वो नहीं है। प्रतिका टैलेंटेड हैं, टेक्निकली साउंड हैं, लेकिन T20 हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। तो कुल मिलाकर अनुत्तरित सवाल हैं, उसका हमें हल ढूंढना होगा। लेकिन अभी सेमीफाइनल हैं, फाइनल हैं, इन दो मैचों में ज़रूर मैं समझता हूं, जब श्रीलंका या संभावित कोई हमारी टीम सामने आएगी, तो इसका हल मैं समझता हूं युद्ध स्तर पर ढूंढना ही होगा हमें, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और मुश्किलें वहीं की वहीं बनी रहें और हम वन साइडेड मुकाबले जीत कर फूल कर कुप्पा हो जाएं।
2: जी हाँ, अगर श्रोताओं आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और हमारे विशेषज्ञों से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो नंबर डायल करें 0112342108 और 0312 पर आप अपने विचार या सवाल पूछ सकते हैं।
4: वैशाली, गेंदबाजी में आज थोड़ा बेटर एग्जीक्यूशन हो सकता था, क्योंकि हांगकांग जैसे नेशन की हम बात करें, फुल टाइम क्रिकेट प्लेइंग नेशन नहीं है, लेकिन इंडिया जो साल में इतना ज़्यादा क्रिकेट खेल रहा है, आप अक्रॉस फॉर्मेट्स क्रिकेट खेल रहे हैं, WPL की सुविधा है आपके लिए अपने प्लेयर्स को इन्हांस करने के लिए, और इतने डोमिनेंट साइड होने के बाद भी एक फ्रेश साइड आती है और लगभग 17वें ओवर तक वो खेल जाते हैं, तो आज शायद बॉलिंग में थोड़ा बेटर एग्जीक्यूशन हो सकता था, क्योंकि दीप्ति शर्मा पहले

0: दो ओवर्स में दो विकेट चटका चुकी थी, और तीसरा ओवर उनका जो हरमनप्रीत कौर है वो 15वें ओवर में, 16वें ओवर में वो लेके आई है, तो शायद उन्हें पहले ही ला के टीम को जल्दी वापस पवेलियन लौटाया जा सकता था।
1: बिल्कुल लौटाया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें इकोनॉमी रेट तो वहाँ पे बॉलर्स का सेम नहीं है, कहीं पे किसी का 1 पॉइंट कुछ इकोनॉमी है, किसी की 2 है, ये इकोनॉमी बहुत बेटर है। एंड जो हमारे यंगेस्ट प्लेयर हैं उनको कॉन्फिडेंस देना भी एक कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने निभाई भी है, क्योंकि श्रीचरणी प्रेमा एंड नंदिनी शर्मा, जैसे कि उन्होंने पहली विकेट ली थी, स्किट बॉल करवाई और यॉर्कर दी साथ में, तो ये एक एक्सपीरियंस से ही आता है। अगर जितने आप उस पिच पे टाइम स्पेंड करेंगे, और मैं जैसे बोलती हूँ बैटर के लिए, वैसे ही मैं बोलती हूँ कि बॉलर के लिए भी, जितना बॉलिंग आप उस पिच पे करेंगे तो आपको पिच रीडिंग करनी आ जाएगी कि बॉल कैसे, पिच कैसे रिएक्ट कर रही है, तो वो इम्पॉर्टेंट था हमारे यंगेस्ट प्लेयर्स के लिए, यंगेस्ट बॉलर के लिए। अदरवाइज क्योंकि दीप्ति शर्मा ऑलरेडी यहाँ पर खेल चुकी हैं, उनको इस पिच के बारे में आइडिया है, क्रांति गौड़ भी खेल चुकी है इस ग्राउंड पर, लेकिन बाकी हमारे जितने भी बॉलर्स बचते हैं, चाहे वो प्रेमा हो, नंदिनी हो या पाली वर्मा को, सबको इस पिच का रीड करना बहुत ज़रूरी था, जिस जो उन्होंने एक उनको वो टाइम दिया उनको रीड करने के लिए, उनको वो ओवर दिया, एंड उसके साथ साथ एक बैटर को रीड करके बॉल डालना, जो हमारी दीप्ति शर्मा कर रही थी। जैसे मनोज जी ने भी बोला कि वो लाइन टू लेंथ बॉल डाल रही थी, एक मोमेंटम वो ब्रेक नहीं करा उन्होंने, वो ब्रेक करना ज़रूरी था, क्योंकि अगर जो ब्रेक हुआ है वो लास्ट के 15-16 ओवर के अंदर ब्रेक हुआ है, वो पहले ब्रेक हो जाता तो थोड़ा वो कॉन्फिडेंस और जल्दी ख़त्म भी हो सकता था ये मैच।
2: भारतीय महिला टीम की ये दूसरी सबसे बड़ी जीत है T20 इंटरनेशनल में। सबसे बड़ी जीत भारत ने 3 जून 2018 को क्वालालंपुर में मलेशिया के अगेंस्ट हासिल की थी। 142 रन से भारत ने वो मैच जीता था। पहले बल्लेबाजी करते हुए उस मैच में भारत ने 3 विकेट पर 169 रन बनाए थे और मलेशिया की पूरी टीम 27 रन पर आउट हो गई थी। तो आज कई रिकॉर्ड्स बने, लेकिन जिस रिकॉर्ड की चर्चा काफी लंबे समय तक होगी मनोज, उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले एक कॉलर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपका, गुड इवनिंग, बताएं कहां से आप बोल रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं। जी जी जी पिछले मैच में स्मृति रनआउट हुई थी, उसकी चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान के मैच की चर्चा हम आगे ज़रूर करेंगे मनोज, लेकिन जिस रिकॉर्ड की चर्चा काफ़ी लंबे समय तक होगी वो स्मृति मानधना के ऑल टाइम हाईएस्ट रन स्कोरर की, 10,880 रन पर वो पहुंच गई हैं। मिताली राज 10,868, लेकिन एक्टिव प्लेयर्स की बात करें तो 5वें नंबर पर इस लिस्ट में हैं वेस्टइंडीज़ की स्टेफनी टेलर, 10,007 रन हैं उनके।
3: देखिए जी, उनका रनों के शिखर पर पहुँचना मैं तो यही कहूँगा कि उनको कॉन्फिडेंस देगा और ज़्यादा, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ठीक है, विद ड्यू रिगार्ड्स टू हरमनप्रीत कौर, अगर ये सही समय है उनको मौका देने का, यानी स्मृति मानधना को अगर इस वक्त टीम की कमान सौंप दी जाए तो सोने पे सुहागा होगा। अगला वर्ल्ड कप भी आना है और उनको पूरी टीम को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय भी मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक तो ये वजह है, एक्सेलरेशन हो, कमज़ोर गेंदों को ना बख्शना और अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चलना, एक रणनीति बनाना, क्योंकि अगर बीच मैदान में स्मृति मानधना है तो मेरे ख्याल से किसी और दूसरे को कोई और अलग से रणनीति बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको बहुत ही अलग साबित करती हैं और माइंडसेट जो है हमारा बहुत पॉजिटिव है, जैसा भी कॉलर ने कहा, तारीफ की इनकी, तो मैं तो यही कहूँगा कि इस प्लेयर पर भरोसा रखो और इनको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी देने का शायद ये सही समय है।
2: और शतकों के मामले में भी वो सबसे ऊपर चली गई हैं। 18वां शतक था उनका, मैग्लैनिंग को पीछे छोड़ा, लेकिन इस लिस्ट में एक्टिव प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। लॉरा वुल्फार्ट हैं 17 शतक के साथ, वेस्ट इंडीज़ की हेली मैथ्यूज़ हैं 15 शतक के साथ, और इंग्लैंड की टैमी ब्यूमे भी हैं जो 14 शतक के साथ। यहाँ कॉम्पिटिशन मिलेगा उन्हें?
3: नहीं, कॉम्पिटिशन मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन स्मृति की जो अच्छी बात है, देखिए इन्होंने

0: जब अपनी कंडीशंस नहीं होती, बाहर की कंडीशंस होती हैं, विपरीत परिस्थितियां होती हैं, वहां ये उभर कर सामने आती है। नॉटिंगहम का मैच याद कीजिए, जहां इन्होंने 112 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ, जब T20 का मुकाबला हुआ था, सबका दिल जीत लिया था इन्होंने। और आज ठीक है, कॉम्पोजिशन कमज़ोर था, लेकिन स्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं थी। गेंद टिप्पा पड़ने के बाद काफ़ी नीची रह रही थी, और ऐसी स्थिति में आप टिकते हैं, खेलते हैं, ठीक है, एक जीवनदान ज़रूर है 95 के स्कोर पर, थोड़ी जहाँ वो हड़बड़ाहट की शिकार हुई थी, लेकिन ओवरऑल अगर देखें, एक निर्दोष पारी और ऐसी पारी जिसने वाकई दिल जीत लिया। और ऐसा जैसे हम अक्सर सचिन के लिए कहा करते हैं, विराट के लिए कहते हैं, मैं तो कहूँगा आज जिसने ये पारी नहीं देखी उसको ज़रूर ये पारी का लुत्फ बाद में ज़रूर उठाना चाहिए, देखना चाहिए। और जो तमाम एकेडमीज़ में जो बच्चे सीख रहे हैं, क्रिकेट में आगे जाना चाहते हैं, उनको ऐसी पारियाँ उनको उनके लिए बिल्कुल एक टॉनिक का काम कर सकती हैं।
1: बिल्कुल, अभी मनोज जी बात कर रहे थे कि ये टॉनिक की जो हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है 137 रन्स की जो विक्ट्री है, आप सेमीफाइनल, इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, और 137 रन्स का जो ये विक्ट्री का मार्जिन है, कहीं ना कहीं वैशाली काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग नोट रहेगा बाकी टीम्स के लिए, क्योंकि अभी आपको ग्रुप ए में अगला जो आपका मुकाबला है पाकिस्तान के साथ है, जब आप फाइनल में जाएंगे ग्रुप बी से भी हम देखें, कहीं ना कहीं थोड़ा जो स्ट्रेंथिंग टीम लग रही है वो श्रीलंका की लग रही है, और अभी ये जो आपकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज हैं ये सारी टीम्स ने देखी होंगी, तो कहीं ना कहीं अब डर का माहौल होगा विमेंस एशिया कप में भारत को लेके बाकी टीम्स का,
2: थोड़ा तो होगा, लेकिन उनको सामने वाली कैसी टीम है वो भी देखनी चाहिए हमें, क्योंकि हम आगे तो पहुंच रहे हैं लेकिन हमारे पास जो कमियां हैं उन कमियों को साथ लेके नहीं जाना है हमें, क्योंकि अगर हम उन कमियों को साथ लेके गए तो वो हमें लैग कर सकती है पीछे आने के लिए, तो हमें वो कमियां यहीं इसी मैच में छोड़ के आगे बढ़ना है, और जो हमारे लैक हो रहे हैं उसको फुलफिल करना है, उन पोजिशंस को फील करना है, उसके बाद ही हम आगे पहुँच सकते हैं। और जैसे अभी मैं और मनोज जी बात कर रहे थे कि थर्ड पोजीशन एंड मिडल ऑर्डर हमारे नहीं है हिटिंग शॉटर्स, तो वो हमें हमारी टीम को बहुत ज़रूरत है उनकी, क्योंकि जैसे आपने बात करी श्रीलंका के साथ हमारा मैच हो सकता है, तो उसके लिए प्रिपरेशन हमें अभी से करनी होगी, एंड मोमेंट पे अगर हम वो प्रिपरेशन करेंगे तो हमें उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन हमें अभी से ढूंढ के चलना है, बिकॉज वी नो कि पाकिस्तान के बाद हम ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं, तो नेक्स्ट मैच हमें किसके साथ ही मिलेगा, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर होकर चले तो वो ज़्यादा बेटर है इंडियन टीम के लिए, वो ट्रॉफी के नज़दीक पहुँचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा।
3: मनोज जी, जैसा कि कॉलर ने भी इशारा किया था कि भारत पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला है, सवाल मेरा यह है कि क्या वो हाई वोल्टेज इंटेंसिटी अब भी मेंटेन हो रही है, क्योंकि जो स्तर है पाकिस्तानी क्रिकेट का और भारतीय टीम जिस स्तर का क्रिकेट खेल रही है, क्या आपको लगता है कि एक बार फिर दुबई में वही चिर प्रतिद्वंद्विता दिखेगी भारत पाकिस्तान की जो दशकों पुरानी रही है?
0: देखिए, जो भी कॉलर ने अभी कहा या जैसा आपने कहा, आप भी समझते हैं और यहाँ वैशाली जी भी मौजूद हैं, आपने खुद इस बात को रियलाइज़ किया होगा कि जब भी कभी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला महिला क्रिकेट में होता है तो मुझे तो कई बार, सच बताऊं ईमानदारी से, शेर और मेमने की लड़ाई लगती है। कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान को भुनाते रहें, लेकिन कुल मिलाकर हम जहाँ पर, जिस मुकाम पर भारतीय क्रिकेट खड़ा है, जिस पर, जिसको सींचा है भारतीय खिलाड़ियों ने, पाकिस्तान बिल्कुल शैशव अवस्था में है। और रही बात ओवरऑल क्रिकेट देखने की, हिंदुस्तान पाकिस्तान का नाम आते ही आप गुल्ली डंडे का भी कोई मैच करवा देंगे तो उसमें भी एक रोमांच बना रहेगा, लेकिन क्रिकेट में आसपास भी कहीं कोई तुलना हो ही नहीं सकती। ठीक है, कुछ एक अपवाद हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम निर्विवाद रूप से चैंपियन ही रहे हैं, पाकिस्तान ने भी एक दो झटके दिए हैं हमें विमेन क्रिकेट में, लेकिन यही है कि कुल मिलाकर अपोनेंट को कमज़ोर नहीं समझना, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो या अन्य कोई टीम हो, मैं तो कहूँगा एसोसिएट टीम को भी आप कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि पिछले मैच में उसने हमारी कलाई खोल दी थी, 40 रन के अंतराल में, 40 के आसपास रन देकर 8 विकेट चटका लिए थे भारत के, तो वो एक चिंता का सबब है। और जीत हार इन टूर्नामेंट्स में, जैसे हम अक्सर कह भी रहे हैं, चर्चा भी हो रही है हमारी इस बारे में, कि वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। ज़रूरत है, जो हमने गलतियां की हैं साउथ अफ्रीका के दौरे पर, जो हमने गलतियां की हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर, जो हम इस बार लगातार हारने का रिकॉर्ड है हमारा, लगातार हम जीत नहीं पा रहे हैं, उन वहां गलतियों को कैसे दूर करें।
3: जी हाँ, बिल्कुल, आज का मुकाबला ज़रूर समाप्त हो गया है, लेकिन जैसा कि मनोज जी बता रहे हैं कि आने वाले मुकाबलों में हमें ज़रूर टफ फाइट मिल

0: सकती है, तो अपनी कमियों को दुरुस्त कीजिए और जो पॉजिटिव्स हैं उसको और बेहतर करते चलिए। मनोज जी आपका, वैशाली आपका, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और आकाशवाणी के श्रोताओं तक विशेषज्ञ राय पहुंचाने के लिए बहुत बहुत आभार,
1: धन्यवाद।
0: हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपनी टेक्निकल टीम का, जिसमें आशा शर्मा, लीला सेठी, कपिला, त्रिलोक गुप्ता और उर्मिला शामिल थी। प्रोडक्शन टीम में सहयोग दिया माधवी तिवारी और स्वाति कपूर ने, और इस पूरे कार्यक्रम को आप तक लेकर आए हमारे प्रोड्यूसर शाहनवाज खान ने। आज के कार्यक्रम में इतना ही, आप बने रहिए आकाशवाणी के साथ। नमस्कार।
2: प्लेयर ऑफ द मैच।
3: अभी अब विमेंस एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और हांगकांग के बीच खेले गए T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
4: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द T20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड हांगकांग ऑफ विमेंस एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।